आनंद को ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वधिया वधाईया राग रतन परवार।

0: सत्संगत इतनी हाजरी प्रवान करनी, क्योंकि समा मैं भी दो तीन मिनट उत्ते लै गया। असल विच वक्ता भावें किड्डा भी वड्डा वक्ता होवे, जे ओह वक्ता नहीं तो फिर वक्ता भी नहीं। जे किसी स्टेज सैकटरी ने पहुंचे खिच खिच के बिठाया भी बह जा भाई तेरा टाइम खत्म हो गया तो फायदा की। सत्संगत माफ करना, कई थावां ते स्टेज सैकटरी इस तरह के होंगे मैक अगे हथ रख के मैक पासे लै जाते भी भाई तेरा टाइम समाप्त हो। बड़ी फिर इंसल्ट फील होंदी है, इस वास्ते माफ़ी चाहुंदा। दो तीन मिनट मैं उपर लै गया अपने समय में समाप्ति करन तों। फुला चुका दिखेवा जी बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की
1: सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये सन बहुत ही सत्कारयोग हजूरी रागी सचखंड श्री हरिमंदर साहब तो दरबार साहब तो भाई साहब भाई सुखजीत सिंह जी कुहाड़का अते उन्हां दा रागी जथा समूह संगत वालों जथे का बहुत बहुत धन्यवाद। सतगुरु सच्चे पातशाह जी रहमत करन, इस तरह चढ़दी कला दे नाल कौम दी पंथ दी सेवा करदे रहन। सो खालसा जी, जो अज तीसरे दिन दे विच राग दरबार सज रहा है, जिस विच सचखंड श्री हरिमंदर साहब तो बहुत ही सत्कारयोग जथे अपने कोल पहुंचे हुए ने भाई कमलजीत सिंह जी, उन्होंने हाजरी भरी है। भाई गुरजीत सिंह जी उन्होंने हाजरी भरी है। इन्हां गुरमुख प्यारियां दा तह दिल तो धन्नवाद है जो बेनती नूं प्रवान करदे होए इस राग दरबार दे विच हाजरियां भरदे लई पहुंचे ने। सो आओ खालसा जी, जो अगला जथा है बहुत ही सत्कारयोग भाई साहब भाई गुरदेव सिंह जी फुल, भाई अमरीक सिंह जी फुल, जो साडा अपना घर दा जथा है। बहुत ही पिछले लंबे समय तो खालसा जी इस वैनकूवर की धरती ते आले दुआले इलाके दे विच कीर्तन दे सवाबा निभा रहे ने। सो सतगुरु सच्चे पातशाह जी रहमत करन, चढ़दी कला बख्शिश करन। सो आओ तकरीबन आने वाले 25 मिनट वास्ते दो जो शब्दों की हाजरी भरनी है, जो दो राग गायन करने ने, गौड़ी ग्वारी वडहंस दखनी। सो दो राग आप संगतां नूं भाई अमरीक सिंह जी फुल, उस्ताद भाई गुरदेव सिंह जी फुल, उन्हां दा जथा सरवण करवावेगा। सो जथियां नूं बेनती है कि कृपा करके समय दे विच रह करके आपां समाप्ति करनी है, क्योंकि कल भी बहुत ज़्यादा लेट प्रोग्राम हो गया सी। सो संगतां ने अगले दिन कारोबारां दे विच भी जाना हुंदा, वीकडेज चल रहे ने। सो बेनती है सारे जथियां नूं कि समय दे विच रह करके आपां अपने जो टाइम दे विच रह करके समाप्ति करनी है। सो आओ जी गुरबाणी नाल जुड़दे हाँ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी।
0: वाहिगुरु जी।

सतनाम करता पुरुष निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजोनी सैभं गुरु प्रसाद हे प्राणात गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु हे संसार ताप हरणे करुणों में सब दुख हरो हे शरण जोग दयाले दीनानाथ मया कर शरीर स्वस्थ कीन समय

जीवन भर चलता रहता है। कुछ के सियाने कहते ने कि मुर्दे दे भी केस वद्दे ने और नाखून वद्दे। खैर जो कुछ भी है, जो केस मुर्दा ने कंगे दे राही झड़ जाते निकल जाते हैं, और जो जिंदा ने ओ सवर जाते हैं, सवर जाते। प्रकृति केसा नू एक सीमा तक रखती है, चाहे वह मुखड़े देने चाहे वह सिर देने। असी देखते हैं जो केसा का मुंडन करते ने आखिरी दमा तक केस उन्होंने वधदे ने, दाड़ा मुने है चौथे पंजवें दिन फिर दाड़ा आ गया, फिर मुने है चौथे पंजवें दिन फिर आ गया। लेकिन इस मुंडन नू, इस मुंडन नू कोई छोड़ देवे तो दाड़ी एक सीमा ते आके रुक जाती है और जीवन भर उत्थे जो है रुकी रहती है, उस तो अगे जो है नहीं जाती। केस भावे नवे जन्म दे रहे ने, मुर्दा झड़ते रहते ने, लेकिन लंबाई एक सीमा तक ही आखिरी दमा तक जो है रहती है। प्रकृति ने इस तरह नाप तोल के हर एक नू जो है केस दिते हुए ने। केसां दा मुंडन प्रकृति नाल जंग है, और इस जंग विच हार ही होंदी है, जित नहीं आउंदी, क्योंकि आखिरी दमा तक केस निकलते रहते ने, वधदे रहते। जैसे जैसे सिर विच आत्म ज्योति खत्म आउंदी गई, नाम अभ्यास खत्म आउंदा गया, केसां दी कदर भी घटदी गई। अज भी असीं देखदे हां कि रामलीला विच राम पेश करना है स्टेज ते, विश्वामित्र नूं पेश करना है, विशिष्ट जी नूं पेश करना है, तो जोड़े भी चाहिए ने, दाड़ियां भी चाहिए ने। और अक्सर बाजार तो नकली जोड़े नकली दाड़ियां खरीद के लिया जाए। असी इस गल का माण कर सकते हैं कि साढ़े सिर से जोड़ा असली है राम वर्गा, साढ़े मुखड़े से दाड़ा असली है विश्वामित्र जैसा, विशिष्ट जैसा, अवतारा का स्वरूप, ऋषि मुनिया का स्वरूप। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने, धन गुरु नानक देव जी महाराज ने साड़ी झोली दे पाया है। हाँ जब कोई ऋषि होने तो, मुनि होने तो, संत होने तो थले जाता है, मनुखता तो थले गिरता है, तो जब थले ही गिर गया तो फिर हुण केसां दी लोड़ भी है। अज सारी दुनिया दे केसां दा मुंडन है। थोड़ी जिया कौम जिसनों असीं सिख कहिंदे आ, केस इस कोली दिखाई देंदे ने, या कुछ थोड़ा जिहा साधु समाज। वैसे बगौर मुताला करिए मुहम्मद साहब केसाधारी सन, हजरत ईसा केसाधारी सन, और इसे तरीके नाल भारत दे तमाम ऋषि मुनि अवतारी पुरुष केसाधारी सन। और सिर्फ केसाधारी नहीं, बहुत अवतारी पुरुष शस्त्रधारी भी सन, जैसे धनुषबाण श्री राम कोल है, जैसे सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण कोल है, जैसे तलवार मोहम्मद साहब दे जो है हाथ दे चाहे, और इसे तरीके नाल परशुराम कोल कुलाड़ा है, बरछा है, हनुमान दे कोल गदा है, गदा विष्णु जी कोल भी है। और इस तरीके नाल असी देखते हैं बहुते अवतारी पुरुष, पैगंबरी पुरुष सुधारी ने, केसाधारी ने। जैसे जैसे पैगंबरां नूं अवतारां नूं मनना घटता गया, उन्हां दा सत्कार सन्मान घटता गया, क्योंकि जितनी मिकदार विच मनुख दा अहंकार वधदा है उतनी ही मिकदार विच अवतार दा सत्कार घटदा है। ते जिस दे लई कोई सत्कार नहीं रहा, आदर नहीं रहा, उस दे पिछे चलण दी लोड़ की है। हाँ कदी कदी नकली राम बन के चलो सामने एक तमाशा कर दिता, नकली जूड़ा सिर से रख के, नकली दाड़ा मुखड़े से लगा के इस तरह नकल पेश कर देती। लेकिन यह पेश करना भी इस गल का सबूत है कि जूड़ा केस इन्हों अवतारी पुरुषों ने धारण किए हुए सन, और जे इन्हों की उस जमाने की लोड़ सी तो अज भी लोड़ है। अगर अज

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: पंजाब के अंदर हमारी सरकार आ गई 2024 में, हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ गई 2025 में, हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे, ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी
2: है।
3: Mercy.

सौ साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पूना में जाके मारा, जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन फॉर्मों की पेशेंस कट

कंठ मिलिया कर ना। अगे आया माघ, मैं संखेप जा तुरा। माघ दे महीने दी लोग बहुत महानता मनते, इशनान दी, दान दी, नाम दी। कई सज्जन माघ दे महीने भी सुखमनी साहब का पाठ कर दे, कई गुरमुख प्यारे वखरे नेम निभांदे ने। महाराज जी ने जेड़ा इशनान माघ विच किया वो एक करोड़ां विचों एक अद्धा करदा है। किन्ने दान वह दे सकदा जिदी जेब च कुछ है, दाणियां दी लप मुठी वह दे सकदा जिदी घर दाणियां दा कोई पड़ोला कोई स्टोर दाने किते ने। जिदे कोल पैसे नहीं वह दान किवें करेगा, जिदे कोल दाने नहीं वह दाने किवें दान करेगा। कहन लगे माघ दे महीने च एक कम कर, नाले करी जा कमाई ते नाले दान करी जा। नाम नू त्या, नाम नू सुन, जे तेरे अंदर नू टिका मिल जाए दा दान भी किसे नू कर दे। माघ मज्जन संग साधुआ धूड़ी कर इशनान, हर का नाम त्याए सुन सबना नू कर दान। गल शुरू की सी फगन तो, असी फगन ते आ गए। मैं ताए बेनती की कि बारह माह रूहानियत कमाण दा एक सिलेबस है। दरअसल एक गुरु की कृपा लैण दा एक वसीला है। जेड़ी गल चेत दे महीने विच कही वो फगन विच सचमुच वापर गई, प्रगट हो गई। हुण असी पढ़िया फलगुण आनंद उपार जना, ते चेत च पढ़िया सी चेत गोविंद आराधिया होवै आनंद कणा। उदो होवै सी, हुण उपार जना, हुण होवे विच ते आ जाण विच दोनां विच बड़ा फर्क है। चेत विच क्या पैदा होवेगा आनंद, फगन विच गुरु ने कहा सचमुच आनंद आ गया। गुरमुखो आपां कथा हर साल करने हैं, महीना सुनने हैं, वक्त लंघदा है, पर किदन वह फगन आएगा जिदन सचमुच आनंद भी आएगा ते साईं भी प्रगट होवेगा। प्रगट हो शब्द वरते हैं, महसूस होए नहीं वरते। फलगुण आनंद उपार जना, हर सज्जन प्रगट आए। ते उथे कहा सी चेत गोविंद आराधिया होवै आनंद कणा, ते अगली तोकसी संत जना मिल पाईए रसना नाम भणा। फगन विच आनंद किवें आया, साई किवें प्रगट होया। कहन लगे फलगुण आनंद उपार जना, हर सज्जन प्रगट आए, संत सहाई राम के कर कृपा दिया मिला। सहाई राम के, ध्यान दिया जे परमात्मा दे संत जन मिलान विच सहायक ने, ओ कृपा करन ता सफर बड़ी जल्दी मुक सकदा है। इत्थे एक बेनती है, क्योंकि भाई साहब भी बैठे आ, केवल सिफत नहीं पाई रजिंदर सिंह जी हुणी, इन्हां महापुरखां दी संगत भी कीती, ये बचन भी दसदे ने उन्हां दे। एक दो वारी दर्शन मैं कीते, पर अज रस्ते च उन्हां दा जीवन पढ़दे आ दो गल्लां बड़ियां सामने आईयां कि खुंडे वाले बाबा जी नूं याद आपां करने पैण। उन्होंने भी लंगर की सेवा चुनी की, महंत जी होना ने, महापुरखा ने, बाबा तारा सिंह जी होना ने भी लंगर की सेवा की। लंगर की सेवा नाल सिमरन, भाई साहब मैं एक बार याद है आप जी ने शब्द कहा कि महंत जी ने कहा सुखमनी साहब करिए ते गुरु अर्जुन देव लैण आउंदे ने। यह शब्द मेरे अज तीकरां जदों सुखमनी साहब पढ़ी दा सलीहत है गुरु साहब की जरूरी झूठ नहीं, क्योंकि कमाई वाले दे शब्द जिंदगी नूं बहुत वड्डी सेध दिंदे ने। उन्होंने भांडियां की सेवा बचपन तो, तुसी इतिहास तो सारे जाणू हो, भांडियां की सेवा हत्थी सिमरन सारे गुरसिख दसदे ने। रात नूं जा के बच्चियां की सेवा, विद्यार्थियों की संभाल। मेरे मन च इको गल वार वार आई गई कि जदों वह घर गए ने दो तीन वार, जो लिखिया भी इतिहास तुसी वापस लिया, ते उन्हां इको गल कही सी बाबा जवाहर सिंह जी नूं कि नाल दे साथी कोई कीर्तन सिख गया, कोई कथा, कोई विद्वान बन गया, कोई वख्यान करता बन गया, मैं तां सिर्फ भांडे धोंदा रह गया। ते उन्हां इको गल कही सी इन्हां भांडियां विच इतनी बरकत है, कथा कीर्तन करन वाले तेरे चुगिरदे सेवा वास्ते तैयार रहे। हुण इह गल अत कथनी नहीं, एक ही कारण, क्योंकि जदों कोई सिमरन करदा धुरे नाल जुड़ जांदा, सोमे नाल जुड़ जांदा,

0: ਪਤੀ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛੱਤੀ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ
0: ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਰਖ ਮਨ ਮਾਹੇ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਗੰਧਿਤ ਤਨ ਲਾਵਹੇ
0: ਜਿਸ ਕੋ ਸਿਮਰਤ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੇ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸੈ ਸੁਖ ਮੰਦਰ
0: ਜਿਸੈ ਧਿਆਇ ਸਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਗ ਸੁਖ ਬਸਨਾ
0: ਆਠ ਪਹਿਰ ਸਿਮਰੋ ਤਿਸ ਰਸਨਾ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੰਗ ਰਸ ਭੋਗ
0: ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਧਿਆਵਨ ਜੋਗ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਠ ਪਟੰਬਰ ਹੰਡਾਵਹੇ
0: ਜਿਸੈ ਤਿਆਗਤ ਅਵਰ ਲੁਭਾਵੇ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸੇਜ ਸੋਈ ਜੈ
0: ਮਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਤਾਕ ਜਸ ਗਾਵੀ ਜੈ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਲ ਸਭ ਕੋ ਮਾਨੈ
0: ਮੁਖਤਾ ਕੋ ਜਸ ਰਸਨ ਬਖਾਨੈ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੋ ਰਹਿਤਾ ਧਰਮ
0: ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ
1: ਰੱਬ ਦੀ ਜਪਤ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨ ਪਾਵਹੇ
0: ਨਾਨਕ ਪਤ ਸੇ ਧੀ ਕਰ ਜਾਵੇ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਰੋ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ
0: ਨਿਵਲਾ ਬੁੱਤ ਸਰਾਮ ਸਨੇਹੀ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਓਲਾ ਰਹਿਤ
0: ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਛਿਦਰ ਢਾਕੇ
0: ਮਨ ਸਰਨੀ ਪਰ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕੈ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਝ ਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ
0: ਮਨ ਸਾਹ ਸਾਹ ਸਿਮਰੋ ਪ੍ਰਭ ਉੱਚੇ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਈ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹੇ
0: ਨਾਨਕ ਤਾਕੀ ਭਗਤ ਕਰੇ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਭੂਖਨ ਪਹਿਰੀਜੈ
0: ਮਨ ਤਿਸ ਸਿਮਰਤ ਕਿਉਂ ਆਲਸ ਕੀਜੈ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਸਵਾਰੀ
0: ਮਨ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭੋ ਕਭੋ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਾਗ ਮਿਲਕ ਧਨਾ
0: ਰਾਗ ਪ੍ਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਮਨਾ
1: ਜਿਨ ਤੇਰੀ ਮਨ ਬੰਤ ਬਣਾਈ
0: ਉਠਤ ਬੈਠ ਸਤ ਸਹਿ ਧਿਆਈ
1: ਇਸੇ ਧਿਆਈ ਜੋ ਏਕ ਲਖੈ
0: ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਰੱਖੈ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰੇ ਪੁੰਨ ਬਹੁ ਦਾਨ
0: ਮਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਕਰ ਤਿਸਕਾ ਧਿਆਨ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ
0: ਇਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਤਾਰੀ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ
0: ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰੋ ਸਦਾ ਅਨੂਪ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਨੀਕੀ ਜਾਤ
0: ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਪਤ ਰਹੈ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਜਸ ਕਹੈ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਨਹਿ ਕਰਨ ਨਾਦ
0: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੇਖੈ ਵਿਸਮਾਦ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੋਲਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ
0: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਵਸਨਾ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਸਤ ਕਰ ਚਲਹਿ
0: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲੈ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵਹੇ
0: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿ ਸਮਾਵੈ
1: ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਗ ਬਰਕਤ ਲਾਗੋ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਨ ਜਾਗੋ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰ
0: ਇਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮੂਲ ਨ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ
0: ਦੇਹ ਮਨ ਮੂੜ ਤੂੰ ਤਾਕੋ ਜਾਪ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ
0: ਇਸੇ ਜਾਨ ਮਨ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪਾਵੇ ਸਾਚ
0: ਦੇਹ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾ ਸਿਉ ਰਾਜ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ
0: ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਜਪੈ ਜਪ ਸੋਏ
1: ਆਪ ਜਪਾਈ ਜਪੈ ਸੋਨਾ
0: ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ
1: ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ
0: ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸ
1: ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਸੈ ਮਨ ਸੋਏ
0: ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਮਤੂਤਨ ਹੋਏ
1: ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ
0: ਆਪੋ ਕਸ਼ਨ ਕਿਨਹੂ ਲਿਆ
1: ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਭ ਹੋ ਤਿਤ ਲੱਗੇ ਹਰਨਾਥ
0: ਨਾਨਕ ਇਨ ਕੈ ਕਸ਼ੁ ਨਹਾਥ ਸਲੋਕ
1: ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ ਜੋ ਜੋ ਕਹਿ ਸਮੁਖਤਾ ਹੋਏ
0: ਸੁਨ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮੁਜਲ ਹੋਤ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਸਗਲੀ ਖੋਤ
1: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ
0: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਪ੍ਰਗਟੈ ਸੁਗਿਆਨ
1: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਪੁਜੈ ਪ੍ਰਭ ਨੀਰਾ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਭ ਹੋਤਨ ਬੇਰਾ
1: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨ
0: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਏਕੋ ਉਪਰ ਜਤਨ
1: ਸਾਧਕੀ ਮਹਿਮਾ ਪਰਨੈ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਨੀ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧਕ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਭ ਮਹਿ ਸਮਾਨੀ
1: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਅਗੋਚਰ ਮਿਲੈ
0: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲੈ
1: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਆਵੈ ਬਸ ਪੰਚਾ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੁੰਚਾ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਭ ਕੀ ਰੇਨ
0: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮਨੋਹਰ ਬੈਨ
1: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨ ਕਥੂੰ ਭਾਵੈ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਸਤਿਤ ਮਨ ਪਾਵੈ
1: ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਤੇ ਭਿੰਨ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਭ ਮੀਤ
0: ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਹਾ ਪੁਨੀਤ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਿਸ ਸੋ ਨੀ ਬੈਰ
0: ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਾ ਵੀਂਗਾ ਪੈਰ
1: ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਾ ਹੀ ਕੋ ਮੰਦਾ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਣੇ ਪਰਮਾਨੰਦਾ
1: ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਾ ਹੀ ਹਉ ਤਾਪ
0: ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਤੇ ਜੈਸਾ ਵਿਆਪ
1: ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਸਾਧ ਪੜਾਈ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਬਣਾਈ
1: ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਾ ਕਰ ਹੂੰ ਭਾਵੈ
0: ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੈ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਸ ਅਗੋਚਰ ਲਹੈ
0: ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਅਜਰ ਸਹੈ
1: ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਬਸੈ ਥਾਨ ਉੱਚੈ
0: ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਹਿਲ ਪਹੁੰਚੈ
1: ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਦ੍ਰਿੜੈ ਸਭ ਧਰਮ
0: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ
1: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨ
1: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰ ਹੈ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਾਧਨ ਬੀਤ ਕੁਟੰਬ ਨਿਸਤਾਰ ਹੈ
1: ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਸੋ ਧਨ ਪਾਵੈ
0: ਜਿਸ ਧਨ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਵਰਸਾਵੈ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਰੇ ਸੇਵਾ
0: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸੋ ਬਾਸੁਰ ਦੇਵਾ
1: ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਪ ਪਲਾਇਨ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਗਾਇਨ
1: ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਰਬ ਥਾਨ ਗਮ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਗਲ ਜਨਮ
1: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਸ਼ ਕਾਲ
0: ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ
1: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਕਲੂਕਤ ਹਰੈ
0: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਰਕ ਪਰ ਹਰੈ
1: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਇਹਾ ਉਹਾਂ ਸੁਹੇਲਾ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਸ਼ਰਤ ਹਰ ਮੇਲਾ
1: ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੋ ਹੀ ਫਲ ਪਾਵੈ
0: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੇ
1: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਰਿਧ ਬਸੈ
0: ਨਾਨਕ ਕੁਦਰੈ ਸਾਧ ਸੁਨ ਰਸੈ
1: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸੁਨੋ ਹਰ ਨਾਉ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ
1: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨ ਮਨ ਤੇ ਬਿਸਰੈ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰੈ
1: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਲੱਗੈ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ
0: ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਘੜ ਘੜ ਜੀਠਾ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਈ ਆਗਿਆਕਾਰੀ
0: ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ
1: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮਿਟੇ ਸਭ ਰੋਗ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਭੇਟੇ ਸੰਜੋਗ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੇ ਹੈ
0: ਜਿਤਾ ਸੁਨੇ ਤੇ ਤਾ ਬਖਿਆਨੇ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਤੇ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ
0: ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਾ ਨਾਹੀ ਅੰਤ
0: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਊਚ ਤੇ ਉੱਚੀ
0: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਮੂਚ ਤੇ ਮੂਚੀ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਬਨਾਈ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਈ ਸਲੋਕ
1: ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ ਅਵਰ ਨ ਪੇਖੈ
0: ਕਸ ਬਿਨ ਕੋਏ
1: ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ
0: ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ
0: ਜੈਸੇ ਜਲ में कमले ले
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख
0: जैसे सूर सर्व को सुख
1: ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान
0: जैसे राज रंक को लागे तुल पवान
1: ब्रह्म ज्ञानी के धीरज एक
0: ज्यो बसदा को खुद को चिंतन ले
1: ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ
0: नानक ज्यो पावक का सह स्वभाव
1: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला
0: जैसे मैल न लागे जला
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रकाश
0: जैसे तर ऊपर आकाश
1: ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान
0: ब्रह्म ज्ञानी के नहीं अभिमान
1: ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा
0: मन अपने सब ते नीचा
1: ब्रह्म ज्ञानी से जन भये
0: नानक जन प्रभ आप करे
1: ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना
0: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना
1: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया
0: ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न भया
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी
0: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी
1: ब्रह्म ज्ञानी बंधन से मुक्ता
0: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता
1: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान
1: ब्रह्म ज्ञानी एक उपरयास
0: ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाह
0: ब्रह्म ज्ञानी परोपकार उमाह
1: ब्रह्म ज्ञानी का नाही धंधा
0: ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा
1: ब्रह्म ज्ञानी का होय सुफला
0: ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला
1: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार
1: ब्रह्म ज्ञानी का एक रंग
0: ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभ संग
1: ब्रह्म ज्ञानी का नाम आधार
0: ब्रह्म ज्ञानी का नाम प्रवार
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत
0: ब्रह्म ज्ञानी अंगुद त्यागत
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद
0: ब्रह्म ज्ञानी के कल सदा आनंद
1: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म कविता
0: ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता
1: ब्रह्म ज्ञानी का होय अचिंत
0: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र
1: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप
0: ब्रह्म ज्ञानी का बट प्रताप
1: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बट भागी पाई है
0: ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है
1: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे है महेश्वर
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर
1: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है
0: ब्रह्म ज्ञानी के सगलवान माहे
1: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद
0: ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश
1: ब्रह्म ज्ञानी का कथिया ना जाए अदा अखर
0: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर
1: ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाना है
0: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने
1: ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
1: ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता
0: ब्रह्म ज्ञानी सत जीव है नहीं मरता
1: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता
0: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता
1: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ
0: ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ
1: ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार
0: ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार
1: ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी श्लोक
1: और तारै जो अंतर नाम सर्व में देख पकवान निमक निमक
0: ठाकुर नमस्कार नानक ओह अपरस सगल निस्तार अष्टपदी
1: मिथ्या नाही रसना परस
0: मन में प्रीत न रंजन दर्श
1: कर्त्या रूप न देखे नेत्र
0: साध की टहल संत संग हेत
1: कर्ण न सुने काहू की निंदा
0: सबते जाने आप को मंदा
1: और प्रसाद विखिया पर हर है
0: मन की वासना मन ते टर
1: इंद्री जत पंच दोख ते रहत
0: नानक कोट मदे को ऐसा है परस
1: वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न
0: विष्ण की माया ते हुए भिन्न
1: कर्म कर्त हो वह ने कर्म
0: इस वैष्णो का निर्मल धर्म
1: काहू फल की इच्छा नहीं बंचे
0: केवल भगत कीर्तन संग रचे
1: मन तन अंतर सिमरन गोपाल
0: सब ऊपर होवत कृपाल
1: आप दृढ़ अवरह नाम जपावे
0: नानक हो वैष्णो परम गत पावे
1: भगवती भगवंत भगत का रंग
0: सगल त्यागे दुष्ट का संग
1: मन से बिन से सगला परम
0: कर पूजे सगल पार ब्रह्म
1: साध संग पापा मल खोवे
0: इस भगवती की मत उत्तम होवे
1: भगवंत की टहल करे नित नीत
0: मन तन अर्पे विष्णु प्रीत
1: हर के चरण हृदय बसावे
0: नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे
1: सो पंडित जो मन प्रबोध है
0: राम नाम आत्म सुध है
1: राम नाम सार रस पीवे
0: उस पंडित के उपदेश जग जीवे
1: हर की कथा हृदय बसावे
0: सो पंडित फिर जो न आवे
1: वेद पुराण सिमरत बूझे मूल
0: सुख मैं जाने अस्तूर
1: वरना को दे उपदेश
0: नानक उस पंडित को सदा देश
1: बीज मंत्र सर्व को ज्ञान
0: जो वरना में जपे को नाम
1: जो जो जपे तिसकी गत होए
0: साध संग पावे जन कोई
1: कर कृपा अंतर उतार है
0: बस प्रेत मुक्त पात्र को उतार है
1: सर्व रोग का यो खद नाम
0: कल्याण रूप मंगल गुण काम
1: काहू जुगत कितै न पाइए धर्म
0: नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म
1: जिसके मन पार ब्रह्म का निवास
0: जिसका नाम सत राम दास
1: आत्म राम तिस नदरी आया
0: दास संतन पाए तन पाया
1: सदा निकट निकट हर जान
0: सो दास दरगा परवान
1: अपने दास को आप कृपा करे
0: जिस दास को सब सोजी परे
1: सगल संग आत्म उदास
0: ऐसी जुगत नानक राम दास
1: रब की आज्ञा आत्म हितावे
0: जीवन मुक्त सो कहावे
1: ऐसा हरक तैसा उस होग
0: सदा अनंत नहीं वियोग
1: ऐसा स्वर्ण तैसी उस माटी
0: ऐसा अमृत तैसी बिक काटी
1: ऐसा मान तैसा अभिमान
0: ऐसा रंग तैसा राजान
1: जो बरताई साई जुगत
0: नानक ओ पुरख कहिए जीवन मुक्त
1: पार ब्रह्म के सगले ठाव
0: जित जित घर रखे तैसा तन्ना
1: आपे कर्ण करावन जोग
0: भावे सोई फन होग
1: असरियो आप होए अंत तरंग
0: लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग
1: जैसी मत दे तैसा प्रकाश
0: पार ब्रह्म करता अविनाश
1: सदा सदा सदा दयाल
0: सिमर सिमर नानक पहे निहाल श्लोक
1: उस्त करे अनेक जन अंत न पारा वार
0: नानक रचना प्रभ रची बहु विद्यनक परकार अष्टपदी
1: कई कोट होए पुजारी,
0: कई कोट आचार व्यवहारी,
1: कई कोट भय तीर्थ वासी,
0: कई कोट बन प्रमय उदासी,
1: कई कोट वीर के स्रोते,
0: कई कोट तपीसर होते,
1: कई कोट आत्म ध्यान धारी,
0: कई कोट कब काव विचारे,
1: कई कोट नवतन नाम त्यावहे,
0: नान करते का अंत न पावे,
1: कई कोट भय अभिमानी,
0: कई कोट अंध अज्ञानी,
1: कई कोट कृपण कठोर,
0: कई कोट अभिग आत्म ने
1: कोर, कई कोट पर दर्भ को हिरहे,
0: कई कोट पर दुख न करे,
1: कई कोट माया श्रम माहे,
0: कई कोट पर देश भ्रमा है,
1: यत यत लाभ होते तित लगना,
0: नानक करते की जाने करता रचना,
1: कई कोट सिद्ध जति जोगी,
0: कई कोट राजे रस भोगी,
1: कई कोट पंखी सर्प उपाय,
0: कई कोट पात्र वृक्ष निपजाए,
1: कई कोट पवन पानी में संतर,
0: कई कोट देश भूमंडल,
1: कई कोट शशि सूर नक्षत्र,
0: कई कोट देव दानव इंद्र शिर शतर,
1: सगर समग्री अपने सूत धार,
0: नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार,
1: कई कोट राजस्थान सातक,
0: कई कोट वेद प्राण समृति अर शास्त्र,
1: कई कोट की रतन समुंद,
0: कई कोट नाना प्रकार जंत,
1: कई कोट की ये चिर दीवे,
0: कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे,
1: कई कोट जख के निर्पिशाच,
0: कई कोट भूत प्रेत सो कर्म रिकाच,
1: साते नेरा सब हूं ते दूर,
0: नानक आप लिप्तरे अप्रभूर,
1: कई कोट पाताल के वासी,
0: कई कोट नरक स्वर्ग निवासी,
1: कई कोट जन्म है जीव है मर है,
0: कई कोट बहु जोनी फिरे,
1: कई कोट बैठ सही खाहे,
0: कई कोट काले थक पाहे,
1: कई कोट की ये धनवंत,
0: कई कोट मा चिंत,
1: जय जय भाणा तह तह राखे,
0: नानक सब कुछ प्राप्त कै हाथे,
1: कई कोट भय बैरागी,
0: राम नाम संग तन लिव लागी,
1: कई कोट प्रभ को खोजंते,
0: आत्म मह पार ब्रह्म लहंते,
1: कई कोट दर्शन प्रभ्यास,
0: जिनको मिलियो प्रभ विनाश,
1: कई कोट मांग है सत्संग,
0: पार ब्रह्म तिन लगा रंग,
1: जिनको होए आप सो प्रसन्न,
0: नानक तेजन सदा तन तन,
1: कई कोट खानी अरखंड,
0: कई कोट आकाश ब्रह्मांड,
1: कई कोट होए अवतार,
0: कई जग की न विस्तार,
1: कई बार पसरियो पासार,
0: सदा सदा एक एक अंकार,
1: कई कोट कीने बहु भांत,
0: प्रभ माहे समात,
1: ताका अंत न जाने कोई,
0: आपे आप नानक प्रभ सोए,
1: कई कोट पार ब्रह्म के दास,
0: जिनहो वत्या तन प्रकाश,
1: कई कोट तत्व के बेते,
0: सदा नहारे एको नेत्रे,
1: कई कोट नाम रस पीव है,
0: अमर पहे सर सद ही जीव है,
1: कई कोट नाम गुण गावे,
0: आत्म रस सुख सहज समावे,
1: अपने जन को साथ साथ समारी,
0: नानको हे परमेश्वर के प्यारे श्लोक,
1: करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोई,
0: नानक तिस बलहार ने जल थल मैयल सोए, अष्टपदी
1: कर्म करावन करने जोग,
0: ज्योत भावे सोई होग,
1: फिर मैं थाप उताप नहारा,
0: अंत नहीं किस बारा वारा,
1: हुक्मे धार अतार रहावे,
0: हुक्मे उपजे हुक्म समावे,
1: हुक्मे ऊच नीच व्यवहार,
0: हुक्मे अनेक रंग प्रकार,
1: कर कर दिखे अपनी वडियाई,
0: नानक सब में रिया समाई,
1: रब भावे मानो गत पावे,
0: रब भावे ता पात्र त्रावे,
1: रब भावे बिन सास ते राखे,
0: रब भावे ता हर गुण पाखे,
1: रब भावे ता पत उधार है,
0: आप करे अपन विचारे,
1: दोहा श्रेया का आप स्वामी,
0: खेले अंतर जामी,
1: जो भावे सो कार करावे,
0: नानक दृष्टि और न आवे,
1: बहु मनुख ते क्या होए आवे,
0: ज्योतिष भावे सोई करावे,
1: इसके हाथ होए ता सब पिछले,
0: ज्योतिष भावे सोई करे,
1: मन जानत बिखिया मह रचे,
0: जे जानते अपने आप बचे,
1: भरमे भूला दह जिस धावे,
0: नमक माही चार कुंड फिर आवे,
1: कर कृपा जिस अपनी भक्त दे,
0: नानक तेजन नाम मिले,
1: छिनवे नीच कीट को राज,
0: बार ब्रह्म गरीब नवाज,
1: जाका दृष्ट कछु न आवे,
0: जिस तत्काल दह तिस प्रगटावे,
1: जाको अपनी करे बख्शीस,
0: ताका लेखा न गणे जग
1: जीओ पिंड सब तिसकी रास,
0: कट पूर्ण ब्रह्म प्रगास,
1: अपनी बनत आप बनाई,
0: नानक जीवे देख बढ़ाई,
1: इसका बल ना ही इस हाथ,
0: कल करावन सर्व को नाथ,
1: आज्ञाकारी बपुरा जीओ,
0: ज्योति स्वभावे सोई फन थी,
1: कब हूँ ऊंच नीच मैं बस
0: है, कब हूँ शोक हर करंग हस है,
1: कब हूँ निंद चिंद व्यवहार,
0: कब हूँ उबक आस प्याल,
1: कब हूँ बेता ब्रह्म विचार,
0: नानक आप मिलावन हार,
1: कब हूँ नृत्य करे बहुभांत,
0: कब हूँ सोए रहे दिन रात,
1: कब हूँ महाक्रोध विकराल,
0: कब हूँ सर्व की होतर वाल,
1: कब हूँ होए वह बड़ राजा,
0: कभु भिखारी नीच का साजा,
1: कभू आप कीर्त में आवे,
0: कभू भला भला कहावे,
1: ज्यों प्रभु राखे ते भी रहे,
0: गुर प्रसाद नानक सच कहे,
1: कभू होए पंडित करे बख्यान,
0: कभू मोहन तारी लावे ध्यान,
1: कभू तट तीर्थ स्नान,
0: कभू सिद्ध साधक मुख ज्ञान,
1: कभू पीठ हस्त पतंग होए दिया,
0: अनक जौन परमे परमिया,
1: नाना रूप ज्यो स्वांगी दिखावे,
0: जो प्रभु भावे तिवे न जावे,
1: जो भावे सोई होए,
0: नानक दूजा अवर न कोए,
1: कभू साध संगति पावे,
0: उस स्थान ते बौर न आवे,
1: अंतर होए ज्ञान प्रकाश,
0: उस स्थान का नहीं विनाश,
1: मन तन नाम रते एक रंग,
0: सदा बसे पर ब्रह्म का संग,
1: ज्यों जल मह जल आए कटाना,
0: ज्यों ज्योति संग ज्योत समाना,
1: मिट गए गबन पाए विश्राम,
0: नानक प्रभ के सद कुर्बान श्लोक,
1: सुखी बसे मस्कीनिया आप निवार तले,
0: बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी
1: जिसके अंतर राज अभिमान
0: सो नरक पाती होवत स्वान
1: जो जन है मैं जो बनवंत
0: सो होवत पिष्टा का जंत
1: आप उसको कर्मवंत कहावे
0: जन्म मरे भोजन परमावे
1: धन भूम का जो करे गुमान
0: सो मूर्ख अंधा अज्ञान
1: कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावे
0: नान की है मुक्ति अगै सुख पावे
1: धनवंता हो कर गर्भावे
0: तरण समान का संग न जावे
1: बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस
0: और भीतरता का हुए विनाश
1: सत्य आप जाने बलवंत
0: होए जाए पसवंत
1: सेना बदे आप अहंकारी
0: धर्म राय तिस करे खुआरी
1: गुर प्रसाद जा का मिटे अभिमान
0: सोजन नानक दरगह परवान
1: कोट कर्म करे हो तारी
0: शरम पावे सकले बरथारे
1: अनक तपस्या करे अहंकार
0: नरक स्वर्ग फिर अवतार
1: अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे
0: हर दरगह को कैसे कवे
1: आप को जो भला कहावे
0: इसे भलाई निकट न आवे
1: सर्व की रेन जा का मन होए
0: कहो नानक ताकि निर्मल सोए
1: जब लग जाने मुझते कश होए
0: तब इस को सुख नाही कोए
1: जब यह जाने मैं किस करता
0: तब लग गर्भ जोन मैं फिरता
1: जब धारे को बैरी मीत
0: तब लग निश्चल नाही चीत
1: जब लग मोह मगन संग माए
0: तब लग धर्म राय देश जाए
1: रब कृपा से बंधन टूटे
0: गुरु प्रसाद नानक हो छुटे
1: सहस कटे लग को उठतावे
0: रतन आवे माया पाछे पावे
1: अनक भोग विखिया के करे
0: नैत बतावे खप खप मरे
1: बिना संतोख नहीं को राजे
0: सुपन मनोरथ फिर से सब काजे
1: नाम रंग सर्व सुख होए
0: प्रभागी किसे प्राप्त होए
1: कर्ण करावन आपे आप
0: सदा सदा नानक हर जाप
1: कर्ण करावन करने हार
0: इसके हाथ कहा विचार
1: जैसी दृष्ट करे तैसा होए
0: आपे आप आप्रम सोए
1: जो किश कीनो सो अपने रंग
0: सब ते दूर सब हो कै संग
1: दूजे देखे करे विवेक
0: आपे एक पै अनेक
1: मरे न बिन सह आवे न जाए
0: नानक सब ही रह समाए
1: आप उपदेशे समझे आप
0: आपे रचिया सब के साथ
1: आप कीनो अपन विस्तार
0: सब कुछ उसका हो करने हार
1: पुस्ते भिन्न कहो किश होए
0: थान तनंतर एक सोए
1: अपने चलित आप करने हार
0: गौत करे रंग अपार
1: मन में आप मन अपने माहे
0: नानक कीमत कह न जाए
1: सत सत सत प्रभु स्वामी
0: गुर प्रसाद के नै बखियानी
1: सत सत सत सब कीना
0: कोट मदै कने बिरले चीना
1: भला भला भला तेरा रूप
0: अत सुंदर अपार अनूप
1: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी
0: घट घट सुने सर उन बखियानी
1: पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत
0: नाम जपे नानक मन प्रीत श्लोक
1: संत शरण जो जन पर सो जन उदर नहार
0: संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी
1: संत के दुखन आरजा कटे
0: संत के दुखन जमते नहीं छुटे
1: संत के दुखन सुख सब जाए
0: संत के दुखन नरक में पाए
1: संत के दुखन मत होए मलीन
0: संत के दुखन शोभा देहीन
1: संत के हथे को रखे ना कोई
0: संत के दुखन थान भ्रष्ट होए
1: संत कृपाल कृपा जे करे
0: नानक संत संग नंदक भीतर
1: संत के दुखन ते मुख पवे
0: संतन के दुखन काग ज्यो लवे
1: संतन के दुखन सर्प जोन पाए
0: संत के दुखन त्रिगत जोन करमाए
1: संतन के दुखन तृष्णा मह जले
0: संत के दुखन सब को छले
1: संत के दुखन तेज सब जाए
0: संत के दुखन नीच निचाए
1: संत दुखी का थाओ को नाही
0: नानक संत भावे ता ए पी कत पाए
1: संत का निंदक महा अतताई
0: संत का निंदक खन टिकन न पाए
1: संत का निंदक महा हत्यारा
0: संत का निंदक परमेश्वर मारा
1: संत का निंदक राज ते हीन
0: संत का निंदक दुखिया अरदीन
1: संत के निंदक को सर्व रोग
0: संत के निंदक को सदा बिजोग
1: संत के निंदा दुख मैं दुख
0: नानक संत भावे ता उसका भी होए मोख
1: संत का दुखी सदा पवित्र
0: संत का दुखी किसे का नहीं मित
1: संत के दुखी को डान लग
0: संत के दुखी को सब त्याग
1: संत का दुखी महा अहंकारी
0: संत का दुखी सदा बेकारी
1: संत का दुखी जन्म मरे
0: संत की दुख न सुख ते तरे
1: संत के दुखी को ना ही ठाऊं
0: नानक संत भावे ता लय मिलाए
1: संत का दुखी अद बीज ते टूटे
0: संत का दुखी किते काज न पहुंचे
1: संत के दुखी को उद्यान परमाइए
0: संत का दुखी कुंजड पाइए
1: संत का दुखी अंतर ते थोथा
0: जो सास बिना मृत की लोथा
1: संत के दुखी की जड़ किस नाही
0: आपन बीजिया पे ही खाहे
1: संत के दुखी को अवर न रख नहार
0: नानक संत भावे ता लय उबार
1: संत का दुखी इउं बिल लाए
0: जो जल बे हुन मछली तड़फड़ाए
1: संत का दुखी भूखा नहीं राजे
0: जो पावक ईंधन नहीं त्रापे
1: संत का दुखी छुटे अकेला
0: जो बवार तेरे खेत माहे दुहेला
1: संत का दुखी धर्म ते रहत
0: संत का दुखी सत मिथ्या कहत
1: कीर्तन दुखा तुर ही पया
0: नानक जो तिस भावे सोई थिया
1: संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए
0: संत के दुखी को दरगह मिले सजाए
1: संत का दुखी सदा सहकाइए
0: संत का दुखी ना मरे ना जिवाइए
1: संत के दुखी की पूजे न आसा
0: संत का दुखी उठ चले निराशा
1: संत के दुख न दृष्टे कोई
0: जैसा भावे तैसा कोई होए
1: पया कीर्तन मिटे कोई
0: नानक जाने सच्चा सोए
1: सब कर तिसकी हो करने हार
0: सदा सदा तिसको नमस्कार
1: रब की उसत करहु दिन रात
0: तिसे त्याहु सास ग्रास
1: सब कछु वरतै तिसका किया
0: जैसा करे तैसा को थिया
1: अपना खेला करने हार
0: दूसर कौन कहे विचार
1: जिसनु कृपा करे तिस अपन नाम दे
0: वड पागी नानक जन से श्लोक
1: तजो सियान पुसुर जन हो सिमरो हर हर गाई
0: एक आस हर मन रखो नानक दुख परम पौ जाए। अष्टपदी
1: मनुख की टीक बिरथी सब जान
0: देवन पौ एक है भगवान
1: जिसके दिया रह अगाही
0: और न तृष्णा लग गया
1: मारे राखे एको आप
0: मानक टैक्षना ही हाथ
1: इसका हुक्म भूत सुख होए
0: इसका नाम रख कंठ परोए
1: सिमर सिमर सिमर प्रभु सोए
0: नानक बिघन न लागे कोए
1: उसत मन में कर निरंकार
0: कर मन मेरे सत व्यवहार
1: निर्मल रसना अमृत पियो
0: सदा सहेला कर ले जियो
1: नैनो बेग ठाकुर का रंग
0: सदा संग बिन सह सब संग
1: चरण चलो मार्ग गोविंद
0: मिटे पाप जपिए हर बिंद
1: हर हर कर्म श्रवण हर कथा
0: आदर ज्ञान नानक उजल मथा
1: बड़ भागी ते जन जग माहे
0: सदा सदा हर के गुण गाहे
1: राम नाम जो करे विचार
0: चेतन मंतक नहीं संसार
1: मन तन मुख बोले हर मुखी
0: सदा सदा जानो ते सुखी
1: एको एक एक पछाने
0: तेतो तकियो सोजी जाने
1: नाम संग जिस का मन मानिया
0: नानक तने निरंजन जाने
1: गुर प्रसाद अपने आप सुजे
0: जिसकी जानो तृष्णा बुझे
1: साथ संग हर हर जस कहत
0: सर्व रोग त्यो हर जन रहत
1: आन दिन कीर्तन केवल बखियान
0: मैं सोई निर्वाण
1: एक ऊपर जिस जन की आशा
0: जिसकी कटिए जम की फसा
1: पार ब्रह्म की जिस मन भूख
0: नानक दर्शन लागे दुख
1: जिसको हर ब्रह्म मन चित आवे
0: सो संत सोहेला नहीं डुलावे
1: जिस प्रभु अपना कृपा करे
0: सो सेवक को किसते डरे
1: जैसा सत ऐसा दृष्ट आया
0: अपने कार्य में आप समाया
1: सोधत सोधत सोधत सीजिया
0: प्रसाद तत् सब पूजे
1: जब देखो तब सब शमूल
0: नानक सो सूक्ष्म सोई स्थूल
1: मैं किस जन मैंने किस मरे
0: अपने चलते आप ही करे
1: आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट
0: आज्ञाकारी तारी सब सृष्ट
1: आपे आप सगल में आप
0: अनंत जगत रच था पे था
1: अविनाशी ना ही किस खंड
0: धारण धार रहे हो ब्रह्मांड
1: लख पे पुरख प्रताप
0: आप जपाए ता नानक जाप
1: दिन प्रभु जाता सो सो पावंत
0: सगल संसार उदर तन मंत्र
1: प्रभु के सेव सगल उदारन
0: प्रभु के सेवक दुख विसारन
1: आपे मेल लई कृपाल
0: गुर का शब्द जप भई निहाल
1: उनकी सेवा सो ही लागे
0: जिसनो कृपा करे बट भागे
1: नाम जपत पावे विश्राम
0: नानक तन पुरख को उत्तम कर मान
1: जो किस करे सो प्रभु के रंग
0: सदा सदा बसै हर संग
1: सुपाई हो वैसो हो
0: करने हार पछाने सोए
1: आपका किया जन मीठ लगाना
0: जैसा सत ऐसा दृष्टाना
1: जिसकी उपजित समाही समाई
0: सुख निदान।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।

कोई बणत बना के एक किचलू दूजा सत पाल घर बेच बुला के एक किचलू दूजा सत पाल घर बेच बुला के

0: परवान,
1: रब को सिमर है से पुरख प्रधान,
0: रब को सिमर है से बेहमोताजे,
1: रब को सिमर है से सर्व के राजे,
0: रब को सिमर है से सुखवासी,
1: रब को सिमर है सदा अविनाशी,
0: सिमरन ते लागे जिन आप दयाला,
1: नानक जन की मंगे रवाला,
0: रब को सिमर है से पार उपकारी,
2: रब को सिमर है तिन सत बल हारी,
0: रब को सिमर है
3: तिन शुरू करो
0: गौड़ी सुखमनी महला पांचवा श्लोक एक ओंकार।

0: कै सिमरन कबहू का प्रभ कै सिमरन कार्य पूरे
1: प्रभ कै सिमरन कबहू न छूरे
0: प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी
1: प्रभ कै सिमरन सहज समानी
0: प्रभ कै सिमरन निहचल आसन
1: प्रभ कै सिमरन कमल विलासन
0: प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार
1: सुख प्रभ सिमरन का अंतन पार
0: से सिमरे जिन आप सिमराए
1: नानक ताके नानक
2: सिमरे से जन का प्रभ मैया
1: नानक तेंजन सन्नी पया
0: हर सिमरन कर भक्त प्रगटाए
1: हर सिमरन लग वेद पाए
0: हर सिमरन पै सिद्ध जति दाते
1: हर सिमरन नीचो कुट जाते
0: हर सिमरन तारी सब धरना
1: सिमर सिमर हर कारण करना
0: हर सिमरन कियो सगले अकारा।

0: तन जन को आप प्रभ दीनार
1: हर जन के ओट सताड़ी
0: हर प्रताप जन अवर न जाने
1: पोत पोत जन हर रस राते
0: सुन समाध नाम रस राते
1: आठ पहर जन हर हर जपे।

0: होवे
1: और उसका विश्वासना होवे
0: जिसकी बस से आगे रखे
1: प्रभु की आज्ञा माने माथे
0: उसते सोगन करे निहाल
1: नानक साहिब सदा दयाल
0: अनक पांत माया के हेत
1: सरकार होवत जाने हेत
0: बिरखी साया से रंग

0: ताप जाता
1: नानक कौन जन जन न पराता
0: करो बेंती पार ब्रह्म सब जाने
1: अपना किया आपे माने
0: आपे आप करत न बेरा
1: किसे दूज नावत किसे बजावत नेरा
0: पाव सियाणप सगल ते रहत
1: सब कुछ जाने आत्म की रहत
0: जिस पावे तिस लय

0: स्वस्थ भई।
1: जय प्रसार शक्ति अमृत खाहे,
0: सागर को रख मन माहे।
1: जय प्रसार सुगंधित तन लाभ है,
0: जिसको सिमरत परम गत पावे।
1: जय प्रसाद बस है सुख मंदिर,
0: जिसे ध्याए सदा अनंतर।
1: जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना,
0: आठ पैर सिमरो तिस रसना।
1: जय प्रसाद रंग रस भोग,
0: नानक सदा ध्याए रावण रोग।
1: जय प्रसाद पाठ पटंबर हडाव है,
0: जिसे त्याग का चावन।
1: जय प्रसाद सुख सेज सोई जय, जय प्रसाद तुझ सब को माने। जय प्रसाद तेरो रहता धर्म,
0: मन सदा ध्याए केवल पार ब्रह्म।
1: प्रभु जी जपत दर्ग है मान पाव है,
0: नानक पासे की कर जावे।
1: जय प्रसाद आरोग कंचन देही,
0: लेवलावो तिस राम सुनेही।
1: जय प्रसाद तेरा ओला रहत,
0: मान सुख पावे हर हर जस कहत।
1: जय प्रसाद तेरे सगल सिद्र ठाके,
0: मन सरनी पर ठाकर प्रभ ताके।
1: जय प्रसाद तुझ को ना पहुँचे,
0: मन सास सास सिमरो प्रभ उचे।
1: जय प्रसाद पाई दुर्लभ देह,
0: नानक ताकी भगत रहे।
1: जय प्रसाद अभूखण बहरी जय,
0: मन दस सिमरत को आलस की जय।
1: जय प्रसाद असब हस्त असवारी,
0: मन दस प्रभु को कबहु ना सारी।
1: जय प्रसाद बाग मिलख तना,
0: राख प्रोहि प्रभु अपने मना।
1: जिन तेरी मन बनत बनाई,
0: उठ बैठ सत से ध्याई।
1: सहे ध्याए जो एक अलख है,
0: नानक तेरी रखे।
1: जय प्रसाद करहे पुन बहुदान,
0: मन आठ पैर कर जिसा जान।
1: जय प्रसाद तू आचार व्यवहारी,
0: इस प्रभु को सास सास जतारी।
1: जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप,
0: सो प्रभु सिमरो सदा अनुप।
1: जय प्रसाद तेरी नीकी जात,
0: सो प्रभु सिमर सदा रात।
1: जय प्रसाद तेरी पत रहे,
0: गुर प्रसाद नानक जस रहे।
1: जय प्रसाद सुनहे कर्ण नाद,
0: जय प्रसाद पेखे बसमाद।
1: जय प्रसाद बोलहे अमृत रसना,
0: जय प्रसाद सुख सहजे बसना।
1: जय प्रसाद हस्त कर चल है,
0: जय प्रसाद संपूर्ण पड़े।
1: जय प्रसाद परम गत पाव है,
0: जय प्रसाद सुख सहज समावे।
1: ऐसा प्रभ त्याग अबर कत लाग हो,
0: गुर प्रसाद नानक मन जागो।
1: यह प्रसाद तू प्रकट संसार,
0: प्रभु को मूल न मनो विसार।
1: यह प्रसाद तेरा प्रताप,
0: रे मन मूल तू ता को जाप।
1: यह प्रसाद तेरे कार्य पूरे,
0: इसे जान मन सदा जुरे।
1: यह प्रसाद तू पावह साच,
0: रे मन मेरे तू दान सुहाच।
1: यह प्रसाद सब की गत होए,
0: नानक जाप जुरे गत होए।
1: आप जपाए जपै सो नाओ,
0: आप गवाए सो हर
1: प्रभ कृपा ते होए प्रगास,
0: प्रभु दया ते हमर निवास।
1: सो प्रसन्न बसे मन सोए,
0: प्रभु

0: सार के संग मुख उज्जवल होता
1: सार संग मन सलीख होता
0: सार के संग मिटे अभिमान
1: सार के संग प्रगटे सो ज्ञान
0: सार के संग पूजे प्रभ नेरा
1: सार संग सब होत वीरा
0: सार के संग पाए नाम रतन
1: सार के संग ऊपर जतन
0: सार की महिमा बरने कान प्राणी
1: नानक सार की शोभा ब्रह्म है समानी
0: सार के संग अगोचर मिले
1: सार के संग सदा पर मिले
0: सार के संग आवे है बस पंचा
1: सार संग अमृत रस पंचा
0: सार संग हो सबकी रेना
1: सार के संग मनोहर बैना
0: सार के संग न कथु तावे
1: सार संग अस्तित्व मन पावे
0: सार के संग माया ते पिन
1: सार संग नानक रस ऊपर संग
0: सार संग दस मन समीत
1: साधु के संग महाप्रणीत
0: सार संग के स्यों नहीं बैर
1: सार के संग न बिगा पैर
0: सार के संग न ही को मंदा
1: सार संग जाने परमानंदा
0: सार के संग न ही हो ताप
1: सार के संग तजे सब आप
0: आपे जाने साध बढ़ाई
1: नानक साध प्रभु बन आई
0: सार के संग न कब हूं तावे
1: सार के संग सदा सुख पावे
0: सार संग बस्त अगोचर लहे
1: साधु के संग अजर सहे
0: सार के संग बसे थान उचे
1: साधु के संग मैं पहुंचे
0: सार के संग दड़े सब धर्म
1: सार के संग केवल पार ब्रह्म
0: सार के संग पाए नाम निदान
1: नानक साधु के करवान
0: सार के संग सब कुल उदार
1: सार संग साजन मीत कुटुंब निस्तारे
0: साधु के संग सोतन पावे
1: ये संदे सब को बरसावे
0: सार संग धर्म राय करे सेवा
1: सार के संग सोवा सुन देवा
0: साधु के संग पाप पलायन
1: सार संग अमृत गुण गायन
0: सार के संग सर्व थान गम
1: नानक सार के संग सफल जन्म
0: सार के संग नहीं कश काल
1: दर्शन भेट तो निहाल
0: सार के संग कलुखत हरे
1: सार के संग नरक पर हरे
0: सार के संग इहा उहा सोहेला
1: सार संग बिछड़ते हर मिला
0: जो इच्छे सोई फल पावे
1: सार के संग न मिलता जावे
0: पार ब्रह्म साध रिद बसे
1: नानक उतरे साग सुन रसे
0: सार के संग सुनो हर नाव
1: सार संग हर के गुण गाओ
0: सार के संग न मनते बिसरे
1: सार संग सर पर निस्तरे
0: सार के संग लगे प्रभ मीठा
1: साधु के संग कटका डीठा
0: सार संग पै आज्ञाकारी
1: सार संग कटकई हमारी
0: सार के संग मिटे सब रोग
1: नानक सार मिटे संजोग
0: सार की महिमा वेदना जाने
1: जेता सुने तेता बख्याने
0: सार की उपमा तह गुण ते दूर
1: सार की उपमा रही परंतु

0: ब्रह्म ज्ञानी सदा नर लेप
1: जैसे जल में कमल लेप
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा नर दुख
1: जैसे सूर सब को सोख
0: ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान
1: जैसे राज राम को लागे दुर्पमान
0: ब्रह्म ज्ञानी के धीरज एक
1: जो बस्ता को खोदे को चंदन लेप
0: ब्रह्म ज्ञानी का यह गनाओ
1: नानक जो पाव का सहज स्वभाव
0: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला
1: जैसे मैल न लागे जला
0: ब्रह्म ज्ञानी के मन होए परगास
1: जैसे तारु पर आकाश
0: ब्रह्म ज्ञानी के भीतर सतर समान
1: ब्रह्म ज्ञानी के नहीं अभिमान
0: ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा
1: मन अपने है सब ते नीचा
0: ब्रह्म ज्ञानी से जन पै
1: नानक
0: ब्रह्म ज्ञानी सगल कीरीना
1: ब्रह्म
0: ज्ञानी की सब ऊपर मैया
1: ब्रह्म ज्ञानी से विश्व पुराना पया
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी
1: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृतवासी
0: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता
1: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल ज्योता
0: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान
0: ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस
1: ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
0: ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाहा
1: ब्रह्म ज्ञानी परोपकार महा
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाही तंदा
1: ब्रह्म ज्ञानी रे साथ संबंधा
0: ब्रह्म ज्ञानी के होए सो भला
1: ब्रह्म ज्ञानी सो भला
0: ब्रह्म ज्ञानी संग सगले उदार
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सर्व संसार।

0: संसार।
1: ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता,
0: ब्रह्म ज्ञानी सब जीवे नहीं मरता।
1: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जगत जी का दाता,
0: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण वर्ग विधाता।
1: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ,
0: ब्रह्म ज्ञानी का सर्व ऊपर हाथ।
1: ब्रह्म ज्ञानी का

0: भक्ति भगवंत को पावे।
1: पंडित जो मन पर बुद्ध
0: राम नाम आत्म में सोवे,
1: राम नाम सार रस पीवे,
0: उस पंडित के उपदेश जग जीवे,
1: हर की कथा हृदय बसावे,
0: सो पंडित फिर जो नावे,
1: वेद प्राण सिमरत बुझे।

0: जपै तिस की गत होए
1: साथ संग पावे जन कोए
0: हर कृपा अंतर और तारे
1: पास प्रेम मुक्त पात को काहे
0: सर्व रूप का औखद नाम
1: कल्याण रूप मंगल गुण नाम
0: जुगत के तैना पाइए धर्म
1: नानक तिस मिले जिस मिले।

0: परवाना
1: अपनी दास को आप कृपा करे
0: इस दास को सब सोगी पहे
1: अगले संगत में उदास
0: ऐसी जुगत नानक राम दास
1: आपकी आज्ञा आत्म हतावे
0: जीवन मुक्त को पावे
1: सहार खते सास सोग
0: सदा नंद नहीं भोग
1: सास वर्ण तैसी अस माटी
0: तैसा हृदय तैसी बेखाटी
1: तैसा मान तैसा अवमान
0: तैसा रंग तैसा रहान
1: बिरताए साई जगत
0: नान्यो परत कहिए जीवन मुक्त।

कोट होए पुजारी कोट पे तीर्थवासी कई कोट वेद के श्रोते कई कोट आत्म ध्यान तार है कई कोट नवतन नाम त्याग है कई कोट पे अपमानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट पर दर्प को फिर कई कोट माया श्रम माहे जित जित लाभ हो तित

0: कई कोट पवन पानी बह संतर
1: कई कोट देश भूमंडल
0: कई कोट शशियर सूर नक्षत्र
1: कई कोट देव राम इंद्र सहित
0: सगल समग्री अपने सूत धारा।

0: कोट मांगे सत संग
1: पार ब्रह्मचंद लागा रंग
0: जिनको होए आप सो प्रसन्न
1: नानक ते जन सदा धन धन
0: कई कोट खानी अर खंड
1: कई कोट आकाश ब्रह्मांड
0: कई कोट होए अवतार
1: कई जोग की नौ विस्तार
0: कई वार पसरियो पासा।

0: कोट पार ब्रह्म के दास
1: तेनो वचना तंबर घास
0: कई कोट तत् के भेते
1: सदा निहारे को नित्रे
0: कई कोट नाम रस पीव है
1: अमर भय सत्संगी जीव है
0: कई कोट नाम गुण गाव है
1: आत्म रस सहज समा

जब लग जाने मुझ ते कश होए जब यह जाने मैं किस करता जब तारे को बैरी मीत जब लग मोह मगन संग माए प्रभ कृपा ते बंधन टूटे सहस खटे लख कोठ तावे ननक भोग बिखिया के करे बिना संतोख नहीं को राज नाम रंग सर्व सुख होए कर्ण करावण आपे आप कर्ण करावण करने हार जैसी दृष्ट करे तैसा होए जो किस किन्नो सो अपने

0: विश्वास हर मन रखो, नानक दुख परम पौर जाए।
1: मानव की टेक बिरती सब जान,
0: देवन कोए के भगवान,
1: जस कह दिए रहे आगाए।

0: नाथ जाके
1: भगवंत हुए नाही मोहे
0: प्रभी जोत सरल पट सोहे
1: भगवंत हुए क्या को गर्व
0: या सब कुछ सिरसा दिया।

0: पर प्रसाद टूटे हारोग मंदिर कथा में थमन खान नाव चढ़ तर अंधकार दीपक प्रकाश
1: दर्शन देख मन होए विलास
0: महाध्यान में मार्ग पावे
1: साधु संत मेरे जोत पर डावे
0: संतन की भाषा तूर मूर्ख काहे बिल लाइया
1: लिखे
0: दुख सुख प्रभ देवन हा।

0: सत जा का सत स्थान
1: पुरुष सत केवल प्रधान
0: दूत सत सत जा की वाणी
1: सत पुरुष समाए समाने
0: सत कर्म जा की रचना सत
1: मूल सत सत उत्पत्त
0: सत करनी निर्मल निर्मली
1: जिसे बुझाए जिसे सब भली
0: सत नाम प्रभ का सुखदाई
1: विश्वास सत नानक बोलते पाई
0: सत वचन साधु उपदेश
1: सत दे जाके दे प्रवेश
0: सत नृत्य बुझे जे कोई
1: नाम जपता की अर्थ होए
0: आप सत किया

की गुर दुर मत मल हिरे सतगुर सिख के बंधन काटे सतगुर सिख को नाम धन दे सतगुर सिख का हलत पलत सवार गुर के ग्रह सेवक जो रहे आपस को कर कश न जनावे मन

0: संत जना मिल कर हो विचार,
1: एक सिमर नाम अवतार,
0: और अपाप सा मीत विसार हो,
1: चरण कमल बिंद में अवतार,
0: अन्न कारण सो प्रभु समरथ,
1: प्रकट कर रहो नाम हर वक्त,
0: यह स्थान सांचो हो वह भगवंत,
1: संत जना का निर्मल मंद,
0: एक आस रखो।

0: जन्म जन्म के कर लिख जाए।
1: आप जपहो अवर नाम च पावो
0: सुमत कहत रहत गत पावो
1: सार पूत सत हर को नाम
0: सहस भाए नाने गुण गाओ
1: गुण गावत तेरी उत्तर समैन
0: मिलस जाए हो मैं लिख पैरो
1: अचिंत बसे सुख नाल
0: सास ग्रास हर नाम संभाल
1: जाड़ स्यान

0: कह हर अगम अपार
1: जब
0: निर्गुण प्रभु सहज सुभाए
1: जब
0: आप है आप अपनी ज्योत तरह अपन चलते आप कारण हार।

निर्मल पुरख पुरख पत होता है निरंजन निरंकार निर्वाण यह स्वरूप केवल जगदीश है ज्योत स्वरूप।

0: सुबह आपन संग बनाई
1: कवन माए पाक मिल सुख पाई
0: या सर्व कला आप हैवर परवीन
1: वेद देव कहां कोशिया
0: आपन आप पर तारा
1: सगन सगन।

0: की जुगत जाके सब हाथ
1: अंतर बाहर जनो साथ
0: पूर्ण दान बेअंत पार
1: नानक दास मार
0: पूरन पूर रहे दयाल
1: सब ऊपर हो कृपाल।

0: सास सास सिमरह गोविंद
1: मान्यांतर की उत्तरेंद्र
0: सास नित्य त्याग हो त्रंग
1: संत जना की तोड़ मनांग
0: आप छोड़ बेनती करहो
1: सास संग अगर सागर धरो
0: हर तन के पर लेहो पंडार
1: नानक गौर पूरे नमस्कार
0: केम कुशल सहज आनंद
1: सास संग भगत परमानंद
0: नरक निवार उद्धारो जियो चित चित बहो नारायण एक
1: एक रूप जाके रंग अनेक
0: गोपाल दामोदर दीन दयाल
1: दुख पंजन पूरन कृपाल
0: सिमर सिमर नाम बारंबार
1: नानक जी का ए आधार
0: उत्तम श्लोक साध के बचन
1: अमरीक लारे यतन
0: सुनत कमावत होत उदार
1: आप रहेल के सार
0: सफल जीवन सफलता का संग
1: जाके हमला का मनंग
0: जय जय शब्द अनाहद वाजे
1: सुन सुन
0: प्रगटे गोपाल महात के माथे
1: नानक उतरे तन के साथे
0: सरन जोग सुन सरनी आए
1: कृपा प्रभा मिलाए
0: मिट गए बैर पए सब रेन
1: अमृत नाम सार संग रहन
0: सो प्रसन्न पए गुरुदेव
1: पूर्ण होए सेवा की सेवा
0: आल जंजाल विकार ते रहते
1: राम नाम सुन रसना कहते
0: कर प्रसाद दया प्रभ धारी
1: नानक
0: प्रभ की औसत करहो संत मीत सुखमनी सहज गोविंद गोविंद गुण नाम
1: जिस मन बसे सो
0: सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए
1: प्रदान पुरख प्रगट सब होए
0: सब ते ऊच पाए स्थान
1: ना होवे
0: हर धन खाट चले जन सोए
1: नानक जिसे प्राप्त होए
0: हेम शांत रिद नव निद
1: बुद्ध ज्ञान सर्व का सिद्ध
0: विद्या तप जोग प्रभ ध्यान
1: ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान
0: चार पदार्थ कमल प्रगा

मैं अज अंगूर दी बेल लाई है, अज अंगूर कोई नहीं। आदमी फल लई, फुल्लां लई, अन्न लई 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल इंतजार कर सकता, करता है। सारी दुनिया चाहती है। पाठ कीता है, जप कीता है, अमृत वेले उठा है, कहिंदे आज पाठ ते बड़ा कीता है, जब तक ते बड़ा कीता है, होया ते कुछ भी नहीं। ऐसे मिलते ने मैनु, होया ते कुछ भी नहीं, हद हो गई। अम्ब दा बूटा तू लाया है और तेरा विश्वास कायम है, कोई नहीं 2-4 साल बाद फल आएगा, आएगा। कई दफा मासूम बच्चे होंदे ने, क्योंकि मैं पिछे किसान दा ही बच्चा रहा, कराना किसाना दा सी बचपना। ऐसा होंदा है, बीज हुण बोया है सवेरे ते शाम नूं फरोल के वेखदा पे पुंगरदा पे कि नहीं। बेसबरी बेसबरी, फिर सवेरे मिट्टी हटा रहे है। ये मैं इस वास्ते कह रहा हूं, बहुत पुरानी गल, देश दी वण तो पहली दी गल, फुल्लां दे बीज मैं बोए छोटे होंदे आ, ते मैं शाम नूं फरोल के वेखा पिया। मां कहन लगी की कर रहे, सवेरे ते बोए ने, ते मैं कह देखदा पिया पुंगर दे पैने कि नहीं। सबर कर भाई, 5-10 दिन सबर कर। मैं सवेरे देखा, शामे मिट्टी हटावा, सवेरे मिट्टी हटावा। एक दिन पिताजी ने कहे, नहीं पुंगरन गए, तू बीज खराब कर देता है। इन्नी बेसबरी, बोए ने तो जरा सबर रख। सवेरे मिट्टी हटा के देखदा, शामे मिट्टी हटा के देखदा, इतनी बेसबरी। किते थोड़ा जिया पाठ सवेरे कीता है, गुरुद्वारे आके मत्था टेकया, किधरे कड़ा प्रसाद दी देग भी कराई होवेगी, चलो लंगर भी कराया होवेगा, गुस्ताखी माफ। फिर देखदा फल ते कोई नहीं आया, फल ते कोई नहीं मिलिया। 4 दिन हो गए, हफ्ता हो गया, फल ते कोई नहीं मिलिया। मैं अर्ज करा, हो सकदा जमीन ते बोया होया बीज व्यर्थ भी चला जाए, कई बीज नहीं पुंगरदे, पर शुभ कर्मां दा बोया होया बीज जो अंतशकरण दी धरती विच बोया है, एक तिल नहीं भन्ने गाले। महाराज दी बाणी कहिंदी, एक तिल जिन्नी गालना भी व्यर्थ नहीं जाएगी, फली बहुत होवेगी, लाजमी होवेगी। पतत पावन हर बिरद सदाए, एक तिल नहीं भन्ने गाले। तिल जितनी भी व्यर्थ नहीं जा, पर सबर ते रख। सबर ए स्वाओ, जे तू बंदा दृढ़ करें, वद थी वे दरियाओ, टुट न थी वे वाहड़ा। बाबा फरीद, सागर दी तरह हो जाएगा अगर तू सबर रखिया, ते बेसबरी नाल तू मिट्टी हटांदा रहा तो शायद बीज पनपन तो रह जान। इधर तू शुभ कर्म कीता, इधर तू गुरु ते गिले भी करदा रहा, तू गिले करना एक होर कर्म हो गया, इसका भी अपना फल है। फिर तो मैर्ज करा, हुक्म लिख दुख सुख पाई है। लिखे हुए हुक्म दे मुताबिक दुख चलता है, सुख चलता है। लिखे हुए हुक्म दे मुताबिक कोई उत्तम है, नीच है। बो दिता है बीज तो फल ते झोली दिच आवेगा। हाफिज होए ने ईरान दिच एक सूफी संत, मैं इन्हां दा मकबरा देखिया सी शिराज दिच। ईरानी कारीगरां ने ते ईरानी श्रद्धालुआं ने कच नूं ढाल के मकबरा बनाया है। ये नहीं कच लिया के उत्थे फिट कीता, नहीं, कच नूं पिघला के दीवारां गुंबद सारा ही कच। और ईरानी कारीगरी दा एक नमूना है, दुनिया तो लोकी आउंदे ने देखदे ने। कबर ते सोना चाड़िया है, सारा दिन उस दे कलाम दी टेप चलदी रहिंदी है, उर्दू परशियन ते इंग्लिश दे नाल नाल उसका अनुवाद भी चलता रहिंदा है, ताकि लोगों नूं पता चले फकीर की कहिंदा है। जो आए ने देखण उन्हां नूं पता ते चले फकीर की कहिंदा है। हाफ